0: मानवी ने
1: जी जी
0: इन्हों का भी स्वागत कर दो
1: बिल्कुल जी जी ऐ करो
2: जसप्रीत जसप्रीत सिंह जी जसप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा
3: हाँ जी सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सारे रेडियो चैनल वालों का सारे स्रोतियों का जो अज एज मीडिया थानू देख रहे आ सो आप जी नू दस्या गया है कि आप किस मकसद लिए इकट्ठे हुए हैं जो अज का उपराला किया गया है सो यही सारे नू बेनती करते हैं कि आप तो हिस्सा बनना इस चीज़ का जो ये अपना कार्य है इसनों मुकम्मल करिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी ते लिस्ट मेरे को जी पहुंची है मैं एक बारी बोल दिया सरदार मलकीत सिंह जी $20 सरदार रजिंदर सिंह जी $100 सरदार जगीर सिंह $50 ते सरदार सतनाम सिंह $100 सरदार एकम सिंह $15 ते सरदार जतिंदर सिंह $100 गुप्त दान $50 सरदार अवतार सिंह $25 सरदार मनप्रीत सिंह $50 अकाल सहाय एक कोई ग्रुप होना है जा संस्था होनी है ते $777.77 ते सरदार हरिंदर सिंह अरोड़ा $100 गुप्तान $20 सहजप्रीत सिंह गिल $51 ते गुप्तान $30 बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हों सारे ही परिवारों का तुसी भी जे हले उड़ीक रहे हो तो जरूर गुरु घर आओ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव है अज जिहड़ी नवीं बिल्डिंग 5 एकड़ जमीन लई है बनाउणी आ उत्थे उहदे लई फंडरेजिंग मीडियाथॉन किया जा रहा है कैलगरी के मजोरिटी मीडिया मैंबर साढ़े को पहुंचे हुए ने इत्थे ते अपने अपनी वारी आके थोड़े नाल अपनी गल्लां बातां कर रहे ने सब तो वड्डा धन्नवाद मैं बॉबी डोड उहनां दा करदा बहादुर सिंह डोड इन्हां दा ना बॉबी डोड तुसीं जाणदे हो जिहड़ा चैनल पंजाबी रिलीजियस चैनल है सुणदे हो उहनां नूं तुसीं जिन्हां ने सानू ये सारा प्रबंध करके अज बिठाया इत्थे तां कि तुहाडे तक साडी आवाज़ पहुँच सके इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है
2: बिल्कुल जी सर साडे कोल होर जिहड़ी एक लिस्ट आई है संगम स्वीट रेस्टोरेंट वालों $500 की सेवा मनजिंदर सिंह $20 सुखदेव सिंह धालीवाल $100 संदीप सिंह $100 दलवीर सिंह हुंदल $51 फतेह सिंह $50 हरविंदर सिंह $100 गुप्त दान $20 जतिंदर सिंह $100 पलक प्रीत कौर $500 ई ट्रांसफर गुरप्रीत सिंह $200 ये लिस्ट जिहड़ी है वो नाम तुहानू दसण दा इको कारण है ये दसना नहीं कि कोई कौन किन्नी सेवा कर रहा है क्योंकि गुरु की कचहरी दे विच तां जिहड़ी तुहाडी हाजरी है वो लग गई है वो शायद जे साडे कोलों नाम बोलण दे विच भी किसी दे गलती होवे तो उहदे लई भी माफ़ी तो जे किसी का नाम रह जाए तो उहदे लई भी माफ़ी पर जिवें मैं कहा कि ये जिहड़े नाम ने वो आरजी तौर ते असीं बोल रहे हैं पर तुहाडी जिहड़ी हाजरी है वो लग गई है गुरु की कचहरी च जदों तुहाडा एक $1 उस गोलक दे विच जांदा है जिथों इस नेक कारज दे लई उपराले हुंदे ने ते इस करके मैटर नहीं करता बार बार असीं कह रहे हैं कि $10 $1 $100 या किसी दे अमाउंट की जिहड़ी कोई कीमत हो ही नहीं सकती क्योंकि सच्चे दिल दे नाल नेक कमाई दे विचों जिहड़ियां कहिंदे ना कि बरकतां पैंदियां ने उत्थे फिर जिहड़ा उह हिसाब किताब नहीं लगता जसप्रीत जी जदों असीं नौजवानां दी गल करदे हां क्योंकि इस दे विच भी लिखिया गया कि जदों 5 एकड़ स्कूल की बिल्डिंग की एक्सपेंशन नहीं है उस दे विच खेड मैदान भी कोशिश होगी कि होवे एक सेंटर भी बनाया जाए कम्युनिटी सेंटर ताकि जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं जोड़िया जा सके शरीरक तौर पर कुछ इस तरह दीआं गतिविधियां होण कि बच्चे जिहड़े ने वह हर कोई जे नहीं भी जिम जाना अफोर्ड कर पा रहा पर वो अपने आप से काम करना चाहता है तो इस तरह के सेंटर उन्हां दे लई होण
3: हाँ जी बिल्कुल जी जिदा कि देखिए कि अज हर एक नूं समां चाहीदा ते स्थान भी चाहीदा
2: जी
3: जदों आपां समां कढ़दे आं अपने कोई परसनल एक्टिविटी लई
2: जी
3: सो आपां नूं पहला ख्याल यह हुंदा कि मैं कित्थे इस चीज़ नूं दिखा सकदा कित्थे मैं जिहदी प्रैक्टिस कर सकदा जिदां कि हुण वी देखिया जांदा जो फेस वन बनिया होया गोबिंद सर्विस स्कूल का इत्थे बच्चों नूं असीं लाइक मेरे एज के जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं असीं खेडदे देखदे हाँ लाइक अपनी स्किल नूं लाइक बिल्ड कर रहे सो उस दे नाल ही सोचा जाता कि कई बार इन्ना बिजी हुंदा जदों उन्हां नूं एक दिन भी मिस हो जाता उन्हां दा उह सानूं कहिंदे कि सानूं स्थान चाहिए उन्हां जगह चाहिए आ फिर उहदे लई सोचीदा कि आपां नूं होर इस नूं वड्डे पद्धर ते लेकेना चाहिए सो उस लई ही जो आपां हरेक बच्चों तों लैके वड्डे नौजवानां तक जो आपां एक्टिविटी कर सकदे हां उन्हां लई आपां जो होर भी हॉल तैयार कर रहे हां सो तां करके कि हर एक नूं मौका मिल सके।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन

0: $21,
1: हाँ जी
0: और सुखजिंदर सिंह $50, चिंदरपाल सोहल $150, जीत सिंह गिल $10, परमिंदर सिंह 50, हरप्रीत कौर $20 जी, फतेह सिंह सोढ़ी $11,
1: जी
0: नवजोत सिंह 51, बिक्रमजीत सिंह गिल $11, इशमीन कौर बराड़ $580, सुखजिंदर सिंह $11,
1: जी
0: हरविंदर कौर 21, अरवंत सिंह कंग $21, अमनदीप सिंह धालीवाल $500, प्रभदयाल सिंह $20, दलवंत सिंह 51, सुखविंदर सिंह $5, बलजिंदर सिंह $5, गुरप्रीत कौर $10, सनमीत सिंह 21, दलवीर सिंह खैरा जल्लू वाली कह लगा जी मैं,
1: नहीं
0: ते $220 जी खैरा साहब,
1: हाँ
0: परमजीत सिंह तंबर $50, शुभप्रीत सिंह धालीवाल $160, अमृतपाल सिंह $165।
2: छवि
1: जी
2: इस बार तुम थोड़ा स्लो हो गए गल की।
0: मैं ना आराम नाल मैं जिन्हें डोनेशन जेड़े कर रहे हैं अपना ना चंगी तरह गट्टी च सुन सकन।
3: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो, कॉल करो 587-360-6890 लाइफ लाइन मेडिकल
4: क्लिनिक,
3: वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक। सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890। परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
5: नमस्ते, सत श्री अकाल, लाता।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
1: So, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी. रीजी, अज की कहना चाहोगे जेड़ा अज मीडियाथॉन करवाया जा रहा है? कम्युनिटी का एक तो गैदरिंग जरूर है, पर यह जो उपराला है जिद एक्सटेंशन जी की जा रही है, इस बारे एक्सपेंशन बारे की कहोगे?
2: वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. मैं यही कहना चाहूंगी जी, बहुत वधिया उपराला किया गया. मैं सोच रही थी कि जे पंथ दे विच एका ता संगत दे विच सोथा भी उत्थी हुंदा. एक्सपेंशन हो रही है, बच्चों सिखी नाल जोड़िया जा रहा है. बाबा जी आउंदे आ, मैं भी उन्हां दे दीवान अटेंड करदी हुंनी आ, है ना.